0: यो का ट्रेडिशनल मैंने कहे बिल्मा का ये में एवरीडे 5 AM का 6 PM जिन्हें लोग रेडी होंगे
1: लोग रेडी हो तो जी